0: लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरल में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will

रज उत्तम। संतुलित अवस्था रे मनरे शांति रहे, संतुलन न रहिले मनरे दुख और कष्ट देखा दिए। आपण महान योद्धा मानंकु हरैथिबा कथा सत, किंतु वर्तमान आपण जहाँ सहित लढ़िबे से सेमानंक ठारु अधिक शक्तिशाली। राज्य त्याग करी जंगल को गले बा इंद्रिय मानंकु पराजित कले सिद्धि लाभ हुए नाही। विषय भोग त्याग करी सन्यासी भली देखा जाउथिबा लोके मने मने सांसारिक सुख और बासना को झुरु थांती, सेई भली लोक माने प्रकृतरे मूर्ख। जेऊ व्यक्ति माने संसार करी सुख दुखर जंजाल भितरे शारीरिक दुख कष्ट मध्यरे निजर मानविक कर्तव्य संपादन करू थांती, सेही माने ही प्रकृतरे वीर बा युद्धजिता। मो भितरे अहंकार नाही, एभली चिंताधारा अहंकारर उपस्थिति को ही बुझाए। धैर्यर सहित सबु परिस्थितिर मुकाबिला करी सांसारिक धर्म पालन कले वास्तव विजय संभव। फळरे आशा न रखी कर्म प्रति निष्ठा रखिबा ही प्रकृत धर्म, सेही धर्म पालन फळरे ही मोक्ष संभव हुए। तेणु धर्मराज, आपणंक भळी जणे विज्ञ ओ विचारवंत व्यक्ति वनगमनर प्रस्ताव देबा युक्तिसंगत कि? आपण निजे विचार करि देखंतु, वर्तमानर परिस्थितिरे आपणंकर प्रकृत कर्तव्य कौन? श्रीकृष्णंक कथा शुणि युधिष्ठिर निजर भूल बुझि पारिथिले, तांकर मानसिक अस्थिरता दूर हो जाइथिला। से उपलब्धि करिथिले स्रष्टांक इंगितरे पितामहंक सरसज्ञा ओ महाप्रयाण संगठित होइथिबार सत्यकु सचेतन होइथिले निजर सीमितता संपर्करे।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ସକାଳ 6:45 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
2: सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
3: पूरा देश पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: जब भी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है सुबह से ही हम के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: श्रोताओं, आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप में पोस्ट कर सकते हैं।
5: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है।
6: सुबह 11 बजे
7: मन की बात।

पुरस्कार वितरण समारोह हेबा बोली पंचायती राज मंत्रणालय तरफ सूचना दिया जाइछि। केबीके इलाकान रेल संजोगीकरण आउ भित्तिभूमि विकास लागि राज्यसभा सांसद सुजित कुमार गलाकाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेटिकिरी भिन्न भिन्न रेल प्रकल्प मानकर बाबदे जनईछन। नुआ रेल लाइन प्रकल्प मानकर भितरे केसिंगा भवानीपाटना भाया उत्केला, फुलवाणी लांजीगढ़ भाया बालीगुदा, मदनपुर रामपुर, रायपुर धरमगढ़ भाया राजिम, गरियाबंद, देवभोग आउ नुआपड़ा धरमगढ़ भाया कोमना खड़ियाल गोलामुंडा रही छे। इतर सहित रेल भित्तिभूमि के बरकस करबार आउ एक्सप्रेस ट्रेन मान कर रहणी बाबदे भी आलोचना करा जाई छे। पूर्वतन रेलपथ महाप्रबंधक परमेश्वर फुंकवाल गलाकाल संबलपुर झारसुगुड़ा रोड सेक्शन रेल भित्तिभूमि आउ तैयार होता रेल प्रकल्प मानक निरीक्षण करिछन। समयाति रेल सेक्शन भिन्न भिन्न स्टेशन थी निरापत्ता व्यवस्था, ट्राफिक सुविधा, यात्री सुविधा आउ चलुवा भित्तिभूमि काम बाबदे बिल समीक्षा करबार सहित निरापद आउ सुगम ट्रेन चलाचल के सुनिश्चित करबार उपरे श्री फुंकवाल जोर दैछन। एथिलागि जरूरी सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबारके अधिकारीमानंकु से निर्देश दैछन। इतर छड़ा अमृत स्टेशन योजना अधीन थी स्टेशन रो पुनर्विकास काम रो अग्रगति बाबदे बिल श्री फुंकवाल समीक्षा करिछन। श्रीक्षेत्र पुरीन पवित्र अक्षय तृतीया दिन मूल हितिबा बाहर चंदन यात्रा आज शेष हेबा। शेष दिने नरेन्द्र पुष्करिणी महाप्रभुमान हलदी पा नीति होगा। गलाकाल पवित्र भौरी तिथि चलती प्रतिमा मैंने नरेन्द्र पुष्करिणी के विजय करार सहित रात्रि चापथी सरोवर्ण एकुश घेरा जल क्रीड़ा करते आईवा कालठानु महाप्रभुमान भितर चंदन यात्रा मंदिर भितर मूल हाँ। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग तरफ ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी कलाहांडी जिला संस्कृति परिषद आउ शुभम अनुष्ठान मिलित सहयोग थी आदिवासी नृत्य संगीत महोत्सव डंगर गलाकाल उद्घाटित हो जाइए। भवानीपाटनार महावीर सांस्कृतिक अनुष्ठान रंगमंचन दुई दिन धरिकी कार्यक्रम हाँ। उद्घाटनी संजे भिन्न भिन्न जनजाति संप्रदायर आदिवासी नाच परेषण कर आदिवासी संस्कृति मौलिकता के सारा पृथ्वीन प्रचार प्रसार करार लगी युव कलाकार अतिथि मैंने ये अवसर आह्वान दे। मनुष्य जीवन आर समाज गढ़भार थी मार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण आए। माँ मानकर उत्सर्गीकृत जीवन के सुरता करी आज सारा पृथ्वी न पाली थे मदर्स डे मातृदिवस फी बच्चर मे मासर दुई नंबर रविवार थी ई दिन पालन करा जायसी। 1908 मसीहा पहला करी अमेरिकार पश्चिम वर्जिनिया ग्राफ्टन सहर नथिबा सेंट एंड्रयूज मेथोडिस्ट चर्च न मातृदिवस पालन करा जायथिला। बलांगीर सिविल कोर्ट परिसन्न अणसंक्रामक रोग चिन्हट शिविर हो जाए। शिविर थी अणसंक्रामक रोग चिन्हट सहित महालिया रक्त परीक्षा उषो और चिकित्सा सुविधा जोगे दिया जाए। इति 80 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षा करा जाए। पानीपाग दक्षिण आंडामान सागर सृष्टि होता घूर्णिवलय आयबा काल तक लघुचाप थी बदलवार संभावना रही। इतार प्रभाव थी राज्य वर्षा होगा भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ अनुमान कर। आईबा 24 घंटा भितर बिजली घड़घड़ी सहित वर्षा होगा बोली पाखापाखि सब् जिला के केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कर। समय अति पवन रेग घंटाक 40-50 किलोमीटर रहा बोली केन्द्र तरफ अनुमान कर। समुद्र अशांत रोथवान मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर के नाई जीवार के कहुच्छे। ई मस दुई नंबर हप्ता तक दक्षिण बंगोपसगर आंडामान सगर आउ आंडामान निकोबार द्वीप मौसुमी पहुंचा बोली पाणीपाग विभाग तरफ अनुमान कर। एचनर आंचलिक खबर इन शेषला आरवलर आंचलिक खबर सुनी पार्बे राती 7:02 थी जुहार।

0: मन की बात प्रधानमंत्री रेडियो पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से करेंगे। मन की बात आकाशवाणी के सभी केंद्र इसे प्रसारित करेंगे।
1: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। बोलता मैं हूं, लेकिन बात आपकी होती है।
2: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी
1: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र वर्तमान समय सकाल 6:55 मिनिट हो संस्कृत संवाद शुणु रिले कर प्रसार करुचु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा

0: प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे विंशत्युत्तर शत विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनायाः पञ्चविंशतितमीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुंता स्थले अद्य रजत जयंती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामीषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आधोपणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानी पटना, समय सकाळ 7:00। श्रोता बंधु सुनंतु, आज आम केन्द्र प्रचारित होगाक कार्यक्रम संपर्क सूचना। चलित अधिवेशन सकाळ 7:00 बाजी 25 मिनिट प्रचार करिवो सरगफल कार्यक्रम। सकाळ 8:00 बाजी 30 मिनिट शुणिबे विशेष कार्यक्रम संथ कवि भीम भोई कृति उपरि आधारित स्तुति चिंतामणि। फोन इन कार्यक्रम हालो आकाशवाणी भवानीपाटना प्रचार करिबो सकाळ 9:00। पूर्वाह्न 10:10 शुणिबे स्थानीय खबर ओ सुमधुर गीतर कार्यक्रम खोला छरका। द्वितीय अधिवेशन दिन 12:30 प्रचार करिबो सुगम संगीत। शिल्पी माने हेले सुभाष दास, रघुनाथ पाणिग्राही, भुवनेश्वरी मिश्र एवं अक्षय कुमार महांति। चासर कथा रही दिन 1:10। ओडिया आलबम्र गीत शुणिपारे दिन 1:20। हिंदी कथाचित्र गीत प्रचार करिबो दिन 2:45। अपराह्न 5:00 शुणिबे विशेष कार्यक्रम उदय भारत। युववाणी कार्यक्रम शुणिबे अपराह्न 5:30। संध्या 6:30 प्रचार करिबो आदिवासी गीतक्रम कुटिया कंध गीत। परिवेषण करिबे खुज माझी एवं साथी। जिला हालचाल क्रम शुणिबे मालकानगिरी जिला संपर्क में राति 7:25 आकाशवाणी कटक केन्द्र। चासबास कार्यक्रम शुणिपारे राति 7:30। चिठी पाइचु कार्यक्रम प्रचार करिबो राति 8:00। हिंदी भक्ति गीत शुणिबे राति 8:15। राति 8:30 स्पोर्ट्स स्कैन स्पॉटलाइट राति 9:15। राति 9:30 शुणिबे अखिल भारतीय रूपक कार्यक्रम और राति 10:00 रही रविवासरीय संगीत सभा। ए समस्त कार्यक्रम रिले करि प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र। श्रोता बंधु, ए थिला आजर कार्यक्रम संपर्क सूचना। आकाशवाणी भवानीपाटना आमर परवर्ती प्रसारण रे रिले करि प्रचार करुछु आंचलिक संवाद, आमर स्वास्थ्य एवं ओडियारे संवाद। शुणिपारे आकाशवाणी कटक केन्द्र अल्पक्षण मध्यरे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और

0: साथ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक चार श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव

0: गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO

0: रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों।
2: अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक, बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को

0: Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: एतेपण जे कार्यक्रम शुणुले आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो आकाशवाणी भवानी पटना श्रोता बंधु एथर प्रचार करुचु संत कवि भीम भोईंक कृति उपरी आधारित विशेष कार्यक्रम स्तुति चिंतामणि रचना एवं उपस्थापना उमाशंकर पंडा संगीत संयोजना प्रभुदत्त प्रधान एवं प्रयोजना प्रदीप्त कुमार श्रीचंदन।

0: हेलो
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ मु चित्रसन सबर कोच कलाहांडी जिला भानी पटना जगन्नाथ
1: नमस्कार आ केमिति अछंदी
0: मु त बहुत भलो अछि आपण केमिति अछंत
1: मु भी बहुत भलो अछि आमे समस्त भलो रे अछु
0: धन्यवाद मैडम
1: आज केउ गीतटी सुनिबा को चाहिबे
0: जिंदगी की रहो में रंज हमसे मिले हे बेबाफा सनम रो सुने देबे
1: ठीक अछि आ आज बहुत माने भलो मूड रे थिला भलिया लागुची खुशी खुशी थिला भलिया लागुची आपन को मन बहुत आज खुशी अछि बधे कारण आमे जानि परिबु कि
0: मु तो सबले खुशी रेगा थाए मैडम
1: नै आज टिके बहुत खुशी लागिले ना
0: नै मैडम मु तो सबले खुशी रेगा थाए कि नै
1: हां मु कहि दउछि आपन को खुशी रो कारण हां
0: कहि दियो
1: कहि देबी
0: हां
1: काहे कि ना आकाशवाणी 90 वर्ष रे पाद थापिछि हां
0: हां
1: सेति पई बधे आपन बहुत खुशी अछंती
0: हां मैडम
1: दीर्घ दिन हला आपन आमो सहित जोडी हि कि अछंती सेति पई आमे मध्य खुशी
0: धन्यवाद मैडम
1: आउ दुकान ठीक चली छि
0: हां दुकान त ठीक चली छि मैडम दुकान सब सामान बनाई दिले आ मिस्त्री को छड़ दिली आप असली आउ
1: आउ खरा रे विशेष ध्यान दउ चंती ना निजो शरीर प्रति
0: हां हां मैडम
1: काई कि ना आपन को काम होची गरम पाखरे बसीबा ना
0: हां सकाळु पूरा 3टा रो निया पाखरे बसचू नानी तार लागे रात्रि भी मु 9टा रे पानी पुणा गाधे नानी
1: हां हां
0: सकाळु उठि करि इने गाधा गुदि करि कर दुकान को जाय नानी
1: फेर
0: 12 बजे पानी गाधे फेर लेंबू आनी छि लेंबू शरबत बने कर पिउची आउ
1: जहाँ भी हो किंतु सूता लुगा पिंधिबा को चेष्टा करिवे खरा दिन काईना निया पाखरे आपण बसु चंती ना
0: हां नानी आउ पॉलिस्टर हेले तो नानी आउ बेसी गरम हेबो नानी
1: हां हां एते व्यस्त भितरे आकाशवाणी रो कार्यक्रम गुडी को सुनु चंती
0: हां नानी
1: आउ कहिले आपण तो सब बेले हम कार्यक्रम सुनु चंती आगो को आउ क्यों भलिया कार्यक्रम आपण सुनिबा को चाहिवे
0: आगो को वेले नानी एबे जो कार्यक्रम तो चली छे नानी आमर जो फोनिन रो चली छे एबे चास बास भी चली छे नानी सेटा भी तो भल चली छे डॉक्टर हेलो डॉक्टर भी भल लागु छे
1: एमिति ही आमे श्रोतांक मन को जानी की भल भल कार्यक्रम परसी देबा को चेष्टा करू छु
0: हां नानी
1: आपण माने ही हमर प्रेरणा आपण माने हमकु कोन कले भल हबो कोन कले नाही आपण ही सब किछे मतामत देले सेटु ही आमे प्रेरणा पाइथाउ
0: हां नानी
1: ताहले सुनिबा आपण को मन पसंद रो गीत टे
0: हां नानी
1: धन्यवाद फोन करथिबारु
0: धन्यवाद रहिले नमस्कार जय जगन्नाथ
1: नमस्कार

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो चा नियो। अरे चा नियो मो।
2: देलो।
1: कौन एमिति गणी पकौछ जे?
2: अरे खबर कागजर चारि पृष्ठा उल्टेलेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ते काई की? आम रेडियोटा अन कलानी मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानीपटना ट्यून कर प्रत्येक दिन सकाळ 10:10 रु 11:10 जाए स्थानीय खबर।

0: हॅलो.
1: हो नानी नमस्कार.
0: नमस्कार.
1: मी सुबोल कुमार साहू कहुतिनि ग्राम पोस्ट पौंडी भाया विजयपुर जिल्ला बरगर नानी.
0: आ केमिति अछंदि?
1: मुइ त बढिया छ नानी, आपण माने केंदा अछन?
0: आमे समस्ते भलरे अछु.
1: धन्यवाद नानी. आउ नानी समस्ते त बढिया छ नानी, खाली गुटे दुखर विषय ते जनावर के चाहू जा नानी. आज कार्यक्रम माध्यम रे आमर आकाशवाणी नियमित श्रोता आमर पौंडी गार चैतन्य पटेल वर्तमान से बुल्ला मेडिकल रे भर्ती जो नानी अस्वस्थता कारण रु आउ आमर आकाशवाणी भवानी पाडर समस्त कर्मकर्ता तथा समस्त श्रोता भाई भौनी मानकु मुई अनुरोध करमी जे आमे भगवान को ठाने प्रार्थना करमा चैतन्य भाई शीघ्र सुस्थ हेकरी घर के फेरी आसुन आर फेर एंदा आकाशवाणी सहित आम सा जुड़ी हेतुन नानी.
0: हाँ आपण बहुत भल कथा कहिसेंती. आमर समस्त श्रोता आमे प्रार्थना करिबा तांको शरीर बहुत जल्दी ठीक हे जीव, काहेकि ना मु एबे दुई तीन जन श्रोता सहित कथा हेलिनी, समस्ते तांकर आशु आरोग्य कामना करुछंती. तो जाणिकी मते खुशी लागिला जे आमे समस्ते केते माने आम भितर भल पाइबा अछि श्रोतांको भितर परस्पर पाइ समस्तक प्रार्थना भगवान निश्चित भाव शुणे.
1: श्रोता परिवार टी विराट परिवार अच्छे समस्त कंटाक्ट नंबर अच्छे जेटी भी मंगल कामना कह नानी धन्यवाद. समस्त चैतन्य भाई पाखे अच्छे समस्या कथा लगस नानी आकाशवाणी कार्यक्रम माध्यम रे नानी.
0: हाँ हाँ क्यों गीत टी शुणा को चाहिए?
1: आज जेन गीत शुणमा नानी चैतन्य भाई आरोग्य कामना कर हिरो रो संकट मोचन केशरी नंदन.
0: ठीक अच्छे आम शुणी देव.
1: हाँ नानी
0: नानी
1: उपस्थापना आज आप परिचय टी दौ नानी.
0: मो नमिता कहूँ.
1: नमिता नानी धन्यवाद नानी.
0: ताले आसंतो ए गीत टी शुणा
1: रोजा नानी. जोहार
0: जोहार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
0: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा।

विचार बुरा करते हाल, पलक फड़के हाय के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम है।

0: ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अच्छा दास बाबू, आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सहीति पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखि दिली, एवं आजि मध्य चेटिनट सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पई रही थाए। चेटिनट सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ। चेटिनट सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: श्रोतमंत सुनु जंती केतेटी सुगम संगीत आकाशवाणी भवानी पटना केंद्र रो एथरो निमाई बानर्जी रचनार कंठ दे भुवनेश्वरी मिश्रा।

0: আচ্ছা দাসবাবু, আপনার ঘরটা 1970 রে তৈরি হইতিলা, রাইট? তাহলে এই পর্যন্ত এত স্ট্রং কেমতি আছে?
1: আরে এইটা একদম সিম্পল, এবং সেইথিপাই মু সেতবেলে মোর বিশ্বাস রাখিতিলি, এবং আজি মধ্যে চেটিনাড সিমেন্ট উপরে
2: শক্তি যাহা বর্ষ বর্ষ নহে বরং পিঢি পাই রহি থাকে। চেটিনাড সিমেন্ট সুপার গ্রেড সিমেন্ট, 64 বর্ষর দৃঢ় মূল দুয়া। চেটিনাড সিমেন্ট, দ্য পারফেক্ট কনক্রিট চয়েস।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है, तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ଶୁଣୁଥିଲେ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का

0: समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
2: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital.

0: माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: श्रोता बंधु शुणु, ग्रीष्म प्रवाह और अंशुघात सुरक्षा पाइबा किसी सतर्कतामूलक सूचना। टाण खरें बाहर को जातु ना, हालुका फिका ढिला सूता लुगा व्यवहार करतु, घरे परदा टाणतु, राति झरका खोला रखत, जिते संभव थंडा पाने गाधातु, शोष ना प्रचुर थंडा पा पिंतु और ओआरएस पाउडर किंवा घरे उपलब्ध पानी यथा लसी घोल घोल दही तोराणी लेंबू पानी प्रचुर परिमाण में पिंतु एवं गरिष्ठ खाद्य खातु ना। चा कॉफी मादक द्रव्य और कार्बन युक्त थंडा पानीय व्यवहार करंतु ना। जदि बाहर को जीवा पड़े साथी कला चषमा जोता चपल और धला छता बा टोपी व्यवहार करंतु, सांगरे पानी बोतल नेबाकु भूलंतु ना। भीषण खरें विशेषकर दिन बारटार दिन तीनटा पर्यंत शारीरिक परिश्रम करंतु ना। बाहर काम करुथिले छता किंबा टोपी व्यवहार करिबा सह ओदा कामुछरे मुंड ओ बेक को घोड़े रखंतु। बंद गाड़ी भितरे छोट पिला मानंकु छाड़ी आसंतु ना। गृहपालित पशुपक्षी मानंकु छाईरे रखंतु एवं पानी पीबाकु दियंतु। शारीरिक असुस्थता अनुभव कले तुरंत डाक्तरंक परामर्श नियंतु। सतर्कता अवलम्बन करंतु और सुरक्षित रुहंतु।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम शेषे शुणु कुमार बापी कंठरे गीतटी प्रभास साहू गीत रचना संगीत बबू मिश्रा।

0: India Meteorological Department has forecast heat wave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया सरकार बनाने का दावा पेश किया अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं

0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन

0: पवन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा भी की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकाल

0: निपटने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे टिके परे।

0: बैठक समय रे श्री शाह केन्द्र सरकार विभिन्न संस्थार प्रस्तुति प्राक सतर्कता व्यवस्था संबल उपयोग एवं अंतः संगठन सहयोग आदि विषय रे समीक्षा करिवार कार्यक्रम रही विशेष करी बैठक रे जे भली धन जीवन हानि न हेबो ताहा उपरे गुरुत्व दिया जीवो। श्री शाह देश रे दीर्घकालीन बन्या दूरीकरण पदक्षेप अग्रगति संपर्क में समीक्षा करिबा सह नदी परिचालना पदक्षेप गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि प्रकल्प सुरक्षा और पाणिपाग पूर्वानुमान वैज्ञानिक अग्रगति संपर्क में समीक्षा करिवे। बैठक में श्री शाह विपर्यय समय सचेतनता तथा अत्यावश्यक रिलीफ सामग्री बंटन और मेडिकल प्रस्तुति संपर्क में आलोचना करिवे बोली जनापड़िछे। केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज संबलपुर जिलार नाक्टी देवल रेढ़ाखोल और जुजुमरा ब्लक विकास पर 194 कोटी टंका व्यय 48 विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करिछन्ते। पर्यटन ऐतिह्यर विकास को गुरुत्व दे नाक्टी देवल ब्लक अंतर्गत भीममंडली इको हेरिटेज साइट्र भूमि पूजन कार्यक्रम में श्री प्रधान मुख्य अतिथि भाव जोगदेले। ऐतिह्यस्थल विकास पर प्राय 8,30,00,000 ऊर्ध टा अनुमोदन हो पर्यटन स्थल विकास कार्य स्वरूप प्रवेश पथ सेतु व्यू पॉइंट और सौरशक्ति व्यवस्था अत्याधुनिक सुविधा और विश्राम गृह निर्माण करा नाक्टी देवल अंचल लोक सुविधापी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नूतन भवन और युव क्रीड़ाद प्रोत्साहित करने एक मिनि स्टाडियम निर्माण निम्ते पदक्षेप रेढ़ाखोल ब्लक अधीन रामपुर गिरीशचंद्रपुर रास्तार उन्नतीकरण कार्य को त्वरान्वित अंचलर गमनागमन व्यवस्था को सुगम कर शुभारंभ हो प्रकल्पगुड़िक स्थानीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने लोकों जीवनशैली व्यापक पर आणवी केन्द्रमंत्री
1: 193 कोटी टंकार व्यय 48 प्रकल्प जुजुमरा रेढ़ाखोल तथा नाक्टी देवल पाखापाखी 18 कोटी टंका व्यय नाक्टी देवल गोटे सीएससी हम ता अंतर्गत 6 PSC 40 ऊर्ध सब सेंटर यार उद्देश्य नाक्टी देवल 15,000 परिवार को पाखापाखि 65,000-70,000 नागरिकों को मौलिक सुविधा उपलब्ध करार दायित्व आज आम ना प्रस्तुत अच्छे।
0: भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन विरुद्ध 1857 आज दिन में भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम व सिपाही विद्रोह आरंभ होता। मीरठे तृतीय बंगला लाइट कावाली सैनिक मैंने गोरु और घुसरी चर्बी तैयारी कैटरेज व्यवहार को नहीं ब्रिटिश अधिकारी विरुद्ध विद्रोह आरंभ करते कारण यह से धार्मिक भावना को उल्लंघन करुला। उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध एक स्थानीय विद्रोह क्रम सह एक बड़ आंदोलन में परिणत होता और भारत स्वाधीनता प्राप्ति पर पथ प्रशस्त कर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1857 सिपाही विद्रोह वीर सैनिक मान श्रद्धाजलि अर्पण करने भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली विद्रोह जनसाधारण मनरे देश प्रेम भावना को प्रज्वलित कर ब्रिटिश सरकार उपनिवेशवादी शक्ति को दुर्बल करिवारे सिपाही विद्रोह अनेक गुरुत्व रही प्रधानमंत्री टीभीके मुख्य सी जोसेफ विजय आज तमिलनाडुर मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करते। नेहरू इंडोर स्टेडियम ठारे पूर्वाह्न 10:00 अनुष्ठित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय को पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराई सहित 9 मंत्री भाव शपथ ग्रहण कर। आसाम बीजेपी नवनिर्वाचित विधायक दल बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को नेता भाव निर्वाचित कर एनडीए विधायक दल बैठक में डॉक्टर शर्मा नेता भाव मनोनीत होती। उभय बैठक में केन्द्रीय पर्यवेक्षक भाव वरिष्ठ बीजेपी नेता जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक भाव नायब सिंह सैनी उपस्थित थे। केन्द्र शिक्षा मंत्रालय पक्षर् चलित ग्रीष्म ऋतु निम्ते समस्त विद्यालय में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 आयोजन करा सामाजिक गणमाध्यम पोस्टर केन्द्र शिक्षा मंत्रालय कही शिविर सप्ताहव्यापी चलो। भारत विभिन्न भाषाभाषी मध्य आत्मपरिचय शब्द गठन ज्ञान दैनन्दिन जीवन में व्यवहृत कथोपकथन और सांस्कृतिक भाव विनिमय शिविर आयोजन मुख्य उद्देश्य। जातीय शिक्षानीति 2020 आधार रे भारतीय सांकेतिक भाषा को प्राधान्य देवा उपरे गुरुत्व दिया जाउछे। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गत वर्ष एही प्रयास आरंभ करिथिले। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछन्ते आकाशवाणी।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାରୀ ପାଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। राज्य सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद के अनुसार ये कार्यक्रम लखनऊ के जनभवन में 3:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत शामिल थीं। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी तराने। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से और स्वर है किशोर कुमार।
1: कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र आकाशवाणी भवानीपटना समय वर्तमान दिन 3:10 चलित अधिवेशन को शेष करने पूर्व आम केन्द्र आज तृतीय अधिवेशन प्रचार होगा कार्यक्रम रूपरेख शुणी अपराह्न 5:00 प्रचार कर विशेष कार्यक्रम उदय भारत जुववाणी शुणी अपराह्न 5:30 संध्या 6:30 रही आदिवासी गीत क्रम कोटिया कंध संप्रदायर गीत परेषण करेंगे खुज माझी और साथी जिला हालचाल क्रम शुणे मालकानगिरी जिला संपर्क में राति 7:25 आकाशवाणी कटक केन्द्र चाषवास कार्यक्रम राति 7:30 चिठी पाई राति 8:00 हिंदी भक्ति गीत शुणे राति 8:15 राति 8:30 स्पॉट स्कैन स्पॉटलाइट राति 9:15 और राति 9:30 शुणे अखिल भारतीय रूपक कार्यक्रम और राति 10:00 रही रवि भाषरीय संगीत सभा। ए समस्त कार्यक्रम रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र एथिला आम केन्द्र आज तृतीय अधिवेशन प्रचार होगा कार्यक्रम सूचना आकाशवाणी भवानीपाटना श्रोताबंधु एठी शेष करुछु आज द्वितीय अधिवेशन को पुणी किसी नुआ कार्यक्रम सह उपस्थित होबु अपराह्न 5:00 से विदाय नौ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी, the news read by निशित कुमार।

0: কিলোহর্জ, এফএম মাধ্যমে 100.3 মেগাহর্জ এবং নিউজন এয়ার এফ মাধ্যমে।
1: নমস্কার, ইয়ে আকাশবাণী হ্যায়। 9 দশক यानि 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सेथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सेथि पय मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहि बरम पीढी पाई रहिथाय। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन तर्पण कुमार प्रधान जुहार पहला मुखिया खबर गुजरात नु सोमनाथ अमृत पर्व 2026 पालन अवसर आयवाकाल जोग देवे प्रधानमंत्री देश संभाव्य बन्या आउ ग्रीष्म प्रभाव स्थितिर मुकाबला के नेकरी आज नुआ दिल्ली नु समीक्षा करिछन स्वराष्ट्र मंत्री संबलपुर थाने 194 कोटी टंका खर्चा थी 48 विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन शिलान्यास कले केन्द्र शिक्षामंत्री भीममंडली इको हेरिटेज साइटर भूमिपूजन कार्यक्रम थी दिले जो आउर मातृशक्तिर त्याग आउ बलिदान के सुर्ता करी आज पालन करा जाउछे विश्व मातृ दिवस गुजरात न थिबार सोमनाथ मंदिर फेरघाय तैयार हेबार 75 बछर पूर्ति अवसर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 पालन करा जाउछे 5 दिन धरिकरी हेबार के थिबार ई उत्सव मंदिर ऐतिहासिक गुरुत्व आउ स्थायी ऐतिह्य के दर्शाउछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आयवाकाल सोमनाथ मंदिर गस्ती जिबे 1026 मसीहा थी सोमनाथ मंदिर उपरे पहला थर लागि आक्रमण करा जाइथिला ई बछर ताहाके हजारे बरस पूरीछे 1951 मसीहा थी सोमनाथ मंदिर फेरघाय खुला जाइथिला चलती बछर तार 75 नंबर वार्षिकी पालन करा जाउछे देशर पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से समयथे इटाके देश उद्देश्य उत्सर्ग करथिले भगवान शिवंकर 12 आदि ज्योतिर्लिंग भितरु पहला ज्योतिर्लिंग हिसाबे सोमनाथ मंदिर गुटे पवित्र जगार मान्यता पाइछे ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर ठाने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम आयवाकाल करा जिबा कार्यक्रम थी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोग देवार कार्यसूची रही देशे संभाव्य बन्या आउ ग्रीष्म प्रवाह स्थितिर मुकाबला लागि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह नुआदिल्ली नु गोटे उच्चस्तरीय बैठक नु प्रस्तुति कामर समीक्षा करिछन बैठक समय थी श्री शाह केन्द्र सरकार भिन्न भिन्न संस्थार प्रस्तुति प्राक सतर्कता व्यवस्था संबल उपयोग आउ आंतः संगठन सहयोग बगैर विषय मानकर उपरे आलोचना करिछन खास करी बैठक थी जनता धनजीवन नुकसान नै हेबा सेतार उपरे जोर दैछन श्री शाह देशे दीर्घकालीन बन्या रुकबार पदक्षेपर अग्रगति बाबद समीक्षा करबार सहित नदी परिचालना पदक्षेप जरूरी भित्तिभूमि प्रकल्पर सुरक्षा आउ पाणिपाक पूर्वानुमानर वैज्ञानिक अग्रगति बाबद भी समीक्षा करिछन बैठक थी श्री शाह विपर्य समयथि सचेतनता आउ जरूरी रिलीफ बंटन आउ मेडिकल प्रस्तुति बाबद भी आलोचना करिछन टीभीके मुख्य सी जोसेफ विजय आज तमिलनाडुर मुख्यमंत्री भाव शपथ नहींछन नेहरू इंडोर स्टेडियम नु सकालर 10 बजे हितबार शपथ ग्रहण समारोह ती राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय को पद आउ गोपनीयतार शपथ पाठ करिछन ताकर सहित 9 जन मंत्री भाव शपथ नहींछन आसाम बीजेपी रो नुआकरी निर्वाचित विधायक दल बैठक थे डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को नेता भाव निर्वाचित करा जाइछि एनडीए विधायक दल बैठक थी भी डॉक्टर विश्व शर्मा नेता भाव मनोनीत होइछन दुई बैठक थी केन्द्रीय पर्यवेक्षक भाव वरिष्ठ बीजेपी नेता जगत प्रकाश नड्डा आउ सह पर्यवेक्षक भाव नायब सिंह सैनी उपस्थित थिले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज संबलपुर जिलार नाक्टीदेउल रेढ़ाखोल आउ जुजुमुरार ब्लॉक विकास लगी 194 कोटी टंका

0: खर्चाधी 48 विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन आ शिलान्यास करिछन। पर्यटन आ ऐतिह्यर विकासके जोर देकर नाक्टीदुल ब्लकर भीममंडली इको हेरिटेज साइटर भूमिपूजन कार्यक्रमती श्री प्रधान मुख्य अतिथि भाव जोग देते। एटा 10,000 बछरनु अत्का पुर्णा रक् आर्ट आउ प्रस्तर जुग उपकरण थिबार ऐतिहासिक स्थलीके अंतर्जातीय पर्यटन मानचित्र थी थान देवार सहित एएसआई मान्यता लागि चेष्टा जारी रहिछे बोली श्री प्रधान कहिछन। ई ऐतिह्यस्थलीर विकास लागि पाखापाखि 8,30,00,000 अत्का टंका अनुमोदन होइछे। पर्यटनस्थलीर विकास काम हिसाबे प्रवेशपथ पुलिया भ्यू पॉइंट आउ सौरशक्ति व्यवस्था अत्याधुनिक सुविधा आउ विश्राम घर तैयार कराजिबा। नाक्टीदेउल अंचल लोकमानकर सुविधा लागि कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरर नुआ भवन आउ युव खेलाड़ीमानकु उत्साहित करबार लागि गुटे मिनि स्टेडियम तैयार करबारके पदक्षेप निया जाइछे। रेडाखोल ब्लक अधीनते थिबार रामपुर गिरीशचंद्रपुर रास्तार उन्नतीकरण कामके तुर्ती करा जाउछे जेनथिर लागि इलाकानो जास व्यवस्था सुविधाती हेइ पारबा। शुभारंभ हेतबार प्रकल्पमान स्थानीय सामाजिक आउ आर्थिक व्यवस्थाके बरकस करबार सहित लोकमानकर जीवनशैलीति व्यापक परिवर्तन आनबा बोली केन्द्रमंत्री श्री प्रधान कहिछन।
1: 193 कोटी टंकार व्ययरे 48 प्रकल्प जुजुमरा रेडाखोल तथा नाक्टी देउलर पाखापाखि 18 कोटी टंका व्ययरे नाक्टी देउलरे गोटे सीएससी हम ता अंतर्गत 6 PSC 40 ऊर्ध सब सेंटर यार उद्देश्य नाक्टी देउलर 15,000 परिवार को पाखापाखि 65-70,000 नागरिक को मौलिक सुविधा उपलब्ध करिवार दायित्व आज आम नवा प्रस्तुत।
0: भुवनेश्वर यूनिट 2 नु अशोकनगर नथिबार आघर सरकारी प्राथमिक विद्यालय न आयबाकेल हेबारके थिबार मुख्यमंत्रीकर जन अभिजोग सुनानी कार्यक्रम बंद रहबा राज्य हेउथबार जबर खराके नजरथि रखिकरि ई निष्पत्ति न्याय जायथबार साधारण प्रशासन आ साधारण अभिजोग विभाग तरफ सूचना मिलिछि। आपन माने खबर सुनिछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र न। मनुष्यर जीवन आर समाज गढ़भारथि मार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण आए। माँ मानकर उत्सर्गीकृत जीवन के सोर करी आज सारा पृथ्वी पालित हो मदर्स डे मातृदिवस फी बछर मे मासर 2 रविवार थी ई दिन पालन करा जायसी। 1908 थी पहला करी अमेरिकार पश्चिम भर्जिनियार ग्राफ्टन सहर नथिबार सेंट एंड्रयूज मेथोडिस चर्च नु मातृदिवस पालन करा जायथिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मातृदिवस अवसर शुभेच्छा जनईकरी कहिछन मातृशक्तिर सम्मान सुरक्षा आ सशक्तिकरण सरकारकर पहला प्राथमिकता। माँ खाली गोटे संबोधन नुहे एटा शक्ति संस्कार आ समाज गठन गोटे मुख्य आधार। जन्मदात्री माँ आउ माटी माँ गौरव रक्षा लगे सबको संकल्पबद्ध होबारके मुख्यमंत्री परामर्श देछन। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछन स्नेह शक्ति त्याग आ धैर्यर प्रतीक हेउछे माँ। सारा मानव जगत लगे माँ मानकर अवदान अतुलनीय बोली उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा कहिछन। केन्द्र शिक्षा मंत्रालय तरफ खरामास लागि सबु विद्यालय नु भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 आयोजन करा जाउछि। ई शिविर हप्ते तक चलबा बोली केन्द्र शिक्षा मंत्रालय तरफ सूचना मिलिछि। देशर भिन्न भिन्न भाषा मानकर भितरे आत्मपरिचय शब्द गठन ज्ञान नीतिदिनिया जीवनती व्यवहार होतबार कथाबार्ता आर सांस्कृतिक भाव विनिमय हेउछि ई शिविर आयोजन रो मूल उद्देश्य। जातीय शिक्षानीति 2020 आधारित भारतीय सांकेतिक भाषा के प्राधान्य देबार उपरे जोर दिया जाउछि। केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गला बछर ई चेष्टा मूल करिथिले। भारतनु ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन विरोधी 1857 मसीहा आजिर दिने भारतर पहला स्वाधीनता संग्राम सिपाही विद्रोह मूल होता। मिरटनु 3 बंगला लाइट काभार्लीर सैनिक मैंने गाई और घुसरी चर्बी थी तैयार कैटरीज व्यवहार के नहींकर ब्रिटिश अधिकारी विरोधी विद्रोह करते। यहाँ से धार्मिक भावना के बाधा देता। उत्तर मध्य भारत नु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरोध गुटे स्थानीय विद्रोह धीरे धीरे गुटे बड़ आंदोलन थी बदली थिला आउ भारत स्वाधीनता पाइबार रास्ता के आहुरी परीक्षा करिथिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1857 मसीहा सिपाही विद्रोहर वीर सैनिक मानकु श्रद्धांजलि जनाबार सहित इटा भारत पहला स्वाधीनता संग्राम बोली कहिछन। पुरी श्रीमंदिर रत्नभंडा नथिबार रत्न अलंकार मानकर गंती मंती काम आइबा कालठानु मूल हेबा। 2 धरिकरि ए गंती काम करा श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी कहिछन। अक्षय तृतीया दिनु महापुरुष मानकर बाहर चंदन यात्रा लागि ई काम स्थगित रखा जाइथिला। श्रीक्षेत्र पुरीनु महापुरुष मानकर बाहर चंदन यात्रा आज शेष होउछे। अक्षय तृतीया ठानु मूल हेथिबार बाहर चंदन यात्रार शेष दिने आज नरेन्द्र पुष्करिणीनु महापुरुष मानकर हलदी पाणी नीति करा जिबा। गला संजय भौरी तिथि अवसर महापुरुष मानकर चलंती प्रतिमा नरेन्द्र पुष्करिणीनु 21 घेरा जल क्रीड़ा करिथिले। आयबा कालु मंदिर भितरे महापुरुष

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता कल से गांधीनगर में शुरू होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 4 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। जबकि शहबाज अहमद और दिग्विजय राठी ने लखनऊ के लिए 2-2 विकेट लिए। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे। लखनऊ के लिए जॉश इंग्लिश ने 33 गेंदों में 85 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से जेमी ओवर्टन ने 3 विकेट लिए। वहीं रायपुर में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार

0: मामले तक मुंबई ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। तो पहले मैच की बात की जाए, चेन्नई वापस लगता है कमबैक के मूड में नजर आ रही है विजय।
1: हाँ जी, इसमें अगर आप देखें हिस्ट्री उठा के देखिए, चेन्नई की खासियत है कि जब आपको लगता है कि ये टीम गई, वो एक कुछ ऐसा पलटती है टूर्नामेंट का रास्ता कि कंटेंडर हो जाती है। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने वापसी की है, उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं, और ख़ास करके उर्विल जैसे अगर खिलाड़ी हैं उनके पास जो मतलब किसी भी क्षण अपने दम पे मैच बदल सकते हैं, तो चेन्नई को किसी कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, आपने उर्विल का जिक्र किया और आज के मैच के स्टार कह सकते हैं, युवा खिलाड़ी है, लेकिन जो छक्के लगाए हैं आज, जो गेंद को बाउंड्री पार फेंका है, क्या कहेंगे इस तारीफ के लिए, इस खिलाड़ी के लिए।
1: एक टाइम था जब मैं 14-15 साल का था, मैं सलीम दुर्रानी जी आते थे तो देखने जाता था, एक छक्का देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो एक ही खिलाड़ी 8-8 छक्के मार रहा है। आप आज गेम बदल गया है, उनका टेक्निक बदल गया है, और उर्विल जो है वो मारते दम से हैं। मैं हाँ, क्योंकि गुजरात में और बड़ौदा में उनका बहुत रेपुटेशन है बड़े बड़े छक्के मारने का, और आज दिखाई दिया उन्होंने बड़े स्टेज पे कि कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी है वो।
0: जी बिल्कुल, अपनी प्रतिभा दिखाई। अगर दूसरे मुकाबले की बात कर ली जाए जो इस समय खेला जा रहा है, जहां आरसीबी और मुंबई इंडियंस आमने सामने हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ इस प्रतियोगिता में बचा नहीं है, टीम 9वें स्थान पर है। और अगर आरसीबी की बात की जाए तो टॉप 4 में बने रहना इस समय आईपीएल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है। रोज टेबल बदलती है, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे, चौथे नंबर पर है आरसीबी, कितना सेफ महसूस कर रही होगी अपने आप को।
1: आरसीबी का सबसे मेन ये है कि उनको ना वो कॉन्फिडेंस है अब कि जो है वो डेफिनेटली प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, और उनके पास वो क्षमता भी है, खिलाड़ी भी हैं। ये फैक्ट है कि विराट के होने से टीम को बहुत फर्क पड़ता है। और जहाँ तक मुंबई की बात है, वो तो बिल्कुल फिसलते चले गए हैं। मेरे ख्याल से अब तो हम कह सकते हैं कि वो तो आउट ऑफ रेकनिंग है, और वही हाल लखनऊ का है। उन लखनऊ का भी कोई टैक्टिक्स समझ में नहीं आते हैं, और ख़ास करके शक्ति आज जब जो हमने देखा, कप्तानी भी कोई मतलब थोड़ी निराशाजनक थी।
0: जी बिल्कुल, एक जो आपकी अंक तालिका में स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन में नजर आती है, आपके डगआउट में नजर आती है, और ऐसा ही शायद इन टीमों के साथ भी देखने को मिल रहा है। और अब क्रिकेट के बाद बात करते हैं उन निशानों की जिन्होंने भारत के लिए आज पदकों की बारिश की। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।
2: Kumari on the line. Nine. Kumari into the nine. And that is a very impressive performance from India here in Shanghai.
3: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने आज फाइनल मुकाबले में शानदार खेल कौशल और संयम का प्रदर्शन किया। भारतीय तिकड़ी ने उतार चढ़ाव भरे फाइनल मुकाबले में शूट ऑफ में चीन को 5-4 से हराकर 2021 के बाद तीरंदाजी विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 4 सेट के मुकाबले के बराबरी पर समाप्त होने के बाद मैच शूट ऑफ में चला गया। निर्णायक क्षण में जब दबाव चरम पर था, तब अनुभवी दीपिका कुमारी ने दबाव के बीच इस यादगार जीत को पक्का करने की जिम्मेदारी संभाली और शूट ऑफ के आखिरी तीर पर महत्वपूर्ण 9 अंक हासिल किए। विश्व कप में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले कल प्रवीण जाधव ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश के पदकों का खाता खोला। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम को बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: विजय, अगर ये कहा जाए कि तीरंदाजी में विश्व कप के पहले चरण में और दूसरे चरण में भारत की साख बचाती हुई नजर आई। भारत की बेटियां, पहली बार भी एक ही पदक था जो मेक्सिको में खेला गया पहला चरण, और आज दीपिका का वो 9 पॉइंटर, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन पे, क्योंकि जो सेमीफाइनल में इस टीम ने करिश्मा किया शायद उसको मेजबान चीन को हरा करके आज दोहराया है।
1: हाँ, जो आप बता रहे थे कि कोरिया को हराया, कोरिया और चाइना को एक ही टूर्नामेंट में बैक टू बैक आपने हरा के रिकर्व, मैं कहूँगा मुझे सबसे बड़ी इस जीत में ये अच्छा लगा कि दीपिका जो है उनका जो टेम्परामेंट है वो उन्होंने दिखाया यहाँ पे, और कितना प्रेशर होगा आप समझिए। उनको पता है कि इतने 9 पॉइंट लेने हैं इस शॉट में, और उन्होंने लिए वहाँ से जो है, और वो भी शूट ऑफ बहुत कठिन होता है शक्ति। और यहाँ पे मैं कहूँगा दीपिका के लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि पीछे जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी की है।

0: की है, और एशियन गेम्स वाले ईयर में इस साल एशियन गेम्स भी हैं, तो इसमें आप आर्चरी से बड़ी उम्मीदें हैं।
1: जी बिल्कुल, आर्चरी से उम्मीदें होंगी जहाँ पे एशियन गेम्स भी हैं, और कुछ वर्ष बाद जब ओलंपिक में उतरेंगे तो दीपिका शायद उस मेडल की कसक को भी पूरा करने में सफल साबित हो इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए।
0: हाँ, दीपिका से उम्मीद है क्योंकि वो उस लायक हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल की आर्चर हैं, और ऐसा कुछ कमाल करेंगी तो उनके लिए अच्छा, उनके करियर के लिए भी अच्छा है।
1: जी बिल्कुल। और अब तीरंदाजी के बाद बात करते हैं निशानेबाजी की, जहां कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिश्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने एकदम सटीक लगाए। दूसरे स्थान पर रही जहां इटली के साथ ये टीम थी, लेकिन क्योंकि क्वालिफिकेशन में हम इटली से पीछे थे इसलिए इस बार ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा, और चीनी ताइपे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, इटली ने रजत पदक जीता। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि ये स्पर्धा अब ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा है, तो ऐसे में हमारी दावेदारी जो है नज़र सब खेलों की, खिलाड़ियों की ओलंपिक जैसे आयोजनों पे होती है, तो एक अच्छा संकेत कि खिलाड़ी आ रहे हैं और मेडल्स लेकर के आ रहे हैं, पहला मेडल है इस जोड़ी का।
0: जी हाँ, और अगर आप देखिए ये भी वही स्पोर्ट है जिसमें भारत ने हमेशा अच्छा किया है, और विश्व स्तर पर कहें या एशियन स्तर पर कहें अच्छा परफॉर्म करते हैं, और लगातार आपको टैलेंट मिलता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, अब तक इंडिविजुअल्स में हम देखते थे कि लगातार भारत के मेडल्स आ रहे थे ISSF की प्रतियोगिताओं में, लेकिन अब मिक्स्ड में और टीम लेवल पे भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आज वीर चोटरानी का मुकाबला मिस्र के मुस्तफा असल से होगा, जो कि विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं वर्तमान में। वीर चोटरानी ने पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को हराया था, और अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन और सेंथिल कुमार का सफर भी समाप्त हो चुका है इस अभियान, इस प्रतियोगिता से, और अभय सिंह भी बाहर हो चुके हैं, तो एकमात्र चुनौती है, और उम्मीद होगी विजय की आज कुछ बेहतर करें और अगले दौर में पहुंचें।
0: हाँ, उन पे उम्मीदें तो रहेंगी क्योंकि अभय को जो है आप हरा के आगे पहुंचे हैं, और चोटरानी भी ऐसा नहीं है कि कोई जो है मजेब खिलाड़ी नहीं है, पर यही है कि जब तक आप एक खिताब नहीं जीतेंगे आप उस रैंकिंग में नहीं आते हैं।
1: जी बिल्कुल, अपनी पहचान बनाने के लिए वो खिताब की दरकार होगी, अभय को हरा करके हौसला मिला होगा, और उम्मीद होगी कि खिताब की दौड़ में भी एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए। गुजरात के गांधीनगर में कल से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: चैंपियनशिप के लिए 28 देशों के लगभग 180 एथलीटों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए योग्यता मार्ग में योगदान देने के कारण महत्वपूर्ण है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से सजी स्टार खिलाड़ियों की सूची में कई ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में चीन 31 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर था। इस आयोजन में उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के दल भी हिस्सा लेंगे, जबकि भारत, चीन और श्रीलंका चैंपियनशिप में 16-16 भारोत्तोलकों के साथ सबसे बड़ी टीम उतारेगा। भारत को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विंध्या रानी देवी और अजीत नारायण, निरूपमा देवी, लवप्रीत सिंह, वेदा बरात भराली जैसे बड़े भारोत्तोलक शामिल हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: काफी दिग्गज खिलाड़ियों से सजी हुई भारतीय टीम है, लेकिन शायद एक खिलाड़ी की कमी इस टीम को खले, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू। इसके पहले गुजरात में अच्छा प्रदर्शन दिया है, लेकिन भारत को शायद उनकी कमी खलती हुई नजर आएगी।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका इश्यू है इंजरी, वो बार बार चोटिल हो जाती हैं, तो उससे वो उनके प्रिपरेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब आपके दिमाग में बैठ जाए कि चोटिल होने का डर, उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस भी लड़खड़ाती है।
1: जी बिल्कुल, और अगर इस आयोजन से इतर एक बात और भी देखा जाए, पहलू की गुजरात मेज़बानी कर रहा है, 44 साल में पहली बार भारत के पास मेज़बानी होगी, और गुजरात यहाँ से हर प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता अपनी उस सहभागिता को भी साबित करना चाहेगा, क्योंकि अब आपको राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी करनी है। कितना बड़ा एक अवसर, या फिर कह सकते हैं कि एक वार्म अप की तरह ये आयोजन होने वाले हैं इस प्रदेश के लिए।
0: बिल्कुल, वार्म अप आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और मैं ये कहूँगा कि कभी भी आप देखें भारत जब मेज़बानी करता है ना सबसे आगे ही रहता है, कभी कमियां नहीं रहती है। इंटरनेशनल लेवल के बहुत बहुत टूर्नामेंट्स कराए हैं, और गुजरात तो बहुत बड़ा हब उभर के आ रहा है। अगर आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जो है तैयारी होगी, और आगे आप ओलंपिक का दावा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी

0: अगर आपको मिला तो वो भी सब सब कहते हैं कि बेस्ट होगा गुजरात उसको होस्ट करने के लिए। सो एक ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन है।
1: जी बिल्कुल, एक तैयारियों के रूप में इसको आंका जा सकता है, जो कि गुजरात ही दावेदारी कर रहा है ओलंपिक के लिए। तो कितना तैयार है 2036 की इस दौड़ के लिए, ये आजमाने के लिए तमाम इस प्रकार के तमाम जो टूर्नामेंट हैं आपके लिए काफ़ी सहायता करते हुए नजर आएंगे। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। दीक्षा मलिक ने कहा कि हर इंसान को संडे ऑन साइकिल का हिस्सा बनना चाहिए।
2: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं, साइकिलिंग करते हुए।
1: तो एक अभियान जो धीरे धीरे पूरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। विजय, रोज संडे के दिन लोग अपनी छुट्टी के सुबह के आलस को त्याग करके उतरते हैं, साइकिल चलाते हैं और एक फिटनेस का संदेश और साथ ही साथ एक संदेश एक अच्छे पर्यावरण के लिए।
0: बहुत ही लोकप्रिय भी है और आप देखिए दिल्ली में बहुत सारे अब साइकिलिंग क्लब्स उभर के आए हैं, वो इस कारण से कि सबको लगता है कि एक संडे के दिन कम से कम आप सुबह जाके साइकिलिंग करेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी होगी और एक पार्टिसिपेशन होता है, मास पार्टिसिपेशन, जहाँ पे नए नए दोस्त आप बनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वेंचर है।
1: जी बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटबॉल की, जहाँ पर इंडियन सुपर लीग में इस समय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और चेन्नई NFC के बीच मुकाबला जारी है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 2-0 की बढ़त बना ली है और इसके पहले केरला ब्लास्टर्स ने मोहम्मदन क्लब को 3-1 से हराया है। तो फुटबॉल भी भारत में, अगर लीग खेलों की बात की जाए, IPL ने एक पूरी नज़ीर पेश की हमारे सामने कि किस तरह लीगों में आपके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मौजूद है, एक अच्छा पूल मिलता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। फुटबॉल में ये लीग काफ़ी सार्थक साबित होती हुई नज़र आ रही है अब तक।
0: जी हाँ, और ये तो फुटबॉल का साल है, अब सारी नज़रें एक महीने में अमेरिका की तरफ होंगे जब वर्ल्ड कप विश्व कप फुटबॉल होगा। और ये आपने बात कही IPL है या ICL ISL है, ये सब टूर्नामेंट्स और ये लीग बहुत बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको एक बुनियादी स्तर पर खिलाड़ियों को एक अच्छा पूल प्रदान करने में काफ़ी सहायक साबित होती हैं। चलते चलते एक बार स्कोर बोर्ड पर वापस नज़र घुमा लेते हैं, जहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस ने इस समय 14 ओवर में 4 विकेट खोकर 125 रन बना लिए हैं और तिलक वर्मा 33 गेंदों में 43 रन बना करके अभी भी डटे हुए हैं, तो टीम के लिए एक छोर भी संभाले हुए हैं और रन की गति को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस

0: अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: radio@mumbai.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा

0: हाय बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people.

0: listen to what the Prime Minister said on the significance of the 10th of May and why he chose the date to conduct the visit.
1: साथियों, आज 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है. 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी. समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया. शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है. इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है.
0: In his speech, the Prime Minister also addressed the global challenges such as the unrest in West Asia. He urged the people of India to practice restraint, conserve resources and uphold their duties to help the nation navigate global crisis, comparing the spirit to the collective effort seen during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Prime Minister also attended the 45th anniversary celebrations of The Art of Living at the organization's International Center on the outskirts of the city. The event brought together spiritual leaders, yoga practitioners, volunteers and visitors from different parts of India and abroad. During the program, the Prime Minister inaugurated the newly built Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: हमारे यहाँ कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्. अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है. सेवा परमो धर्म है. ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है. पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है.
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं. हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं. भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है. हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है. आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है. स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है. हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं. देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है.
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं. आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं.
0: द प्राइम मिनिस्टर इन रीसेंट ईयर्स हैज रिपीटेडली लिंक्ड वेलनेस एंड प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर विद नेशनल प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट.

0: Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboobnagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है. रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है.
0: The Prime Minister also highlighted the development of the Zahirabad Industrial Area as part of the national initiative to build industrial corridors, aiming to transform the region into a manufacturing powerhouse with world-class infrastructure and advanced ICT networks. Let's listen to what he said.
1: Zahirabad Industrial Corridor विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है. यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है.
0: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad Industrial Area in Sangareddy district. The Zahirabad Industrial Area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export-oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है. मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत

0: character. The sounds are different, vowels are different. There's also a primary stress. Thus began my long, unending journey with nuances of diction. I truly feel blessed with the guidance of many avatars of Professor Henry Higgins at Broadcasting House, my Bodhi tree.
1: And then there are those milestones when Akashvani does a trajectory change, charts new vistas, creates fresh road maps.
2: कर पाउडर लगाकर आ गई हूँ मैं आरजे सिमरन आपको ये बताने के लिए कि हाउ माय लाइफ चेंज्ड 360 डिग्रीज एंड बैक एज आई रिमेम्बर इट इन दोस विविड क्रैकलिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ मेमोरी व्हेन आई बिकेम पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन कॉल्ड एफएम रेनबो.

0: In the national program of features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushida Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: ये आकाशवाणी है रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास अकंपनीइंग हिम ऑन मृदंगम इज श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम श्री एम चंद्रकांत
1: विद्वान डी श्रीनिवास तेलंगाना के एक अग्रणी कर्नाटक संगीतकार हैं। एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी मां श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana was born into a musical lineage. He began the art of Veena.

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो। आज की ताजा खबरें,
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और

लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।